नमस्कार, रेडियो लुम्बिनीबाट साँझ 7 बजे को हाल खबर में दिवाकर पन्ती को स्वागत छ। यो हाल खबर एफएम 96.8 मेगाहर्ज, अनलाइन www.radiolumbini.org, विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन र रेडियो लुम्बिनी को फेसबुक पेज बाट प्रत्यक्ष सुन्न सकिन्छ। हाल खबर को शुरू में मुख्य खबर शीर्षक। नेपाली कांग्रेस को 15 महाधिवेशन काठमाडौं में जारी, नया नेतृत्व का लागि उम्मेदवारी दर्ता हुँदै एमालेले स्पष्ट पार्यो वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारी को भूमिका, पार्टी में अध्यक्ष पछि को दोस्रो वरीयता। रसुवाबारीले आर्थिक वृद्धि में असर, 3.7% में आर्थिक वृद्धि खुम्चिने विश्व बैंक को प्रक्षेपण। दशैंको अग्रिम टिकट बुकिंग 23 असोजदेखि खुल्ला हुने, लामो दूरी में 2 चालक अनिवार्य। राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटाई सुविधा को सीमा बढ़ायो, स्वदेशी अनुसंधान को जिंक गांव व्यावसायिक आटा उत्पादन हो, विद्यमान कुपोषण र सूक्ष्म पोषक तत्व कमी न्यूनीकरण करने लक्ष्य। भोटेकोशी को बाड़ी में बेपत्ता नागरिक को मृत्यु दर्ता का लागि 2 ऐन संशोधन को तैयारी, इस पाली को दशैं घमाइलो हुने, मौसमविद को पूर्वानुमान। गुल्मी को मुसिकोटबाट भूमि प्रशासन सेवा शुरू, स्वास्थ्यकर्मी कटौती पछि कपिलवस्तु को यशोधरा आधारभूत अस्पताल को सेवा बन्द। र झरना रनिंग सिल में आज चरंगे फुटबल क्लब सेमीफाइनल में।

0: तिम्रै यादा छ।
1: ए दिलकुमारी, आज त काम गर्ने जागरै छैन।
2: हो भाइ, आज मलाई पनि काम गर्ने जागरै छैन।
3: ओ दिलकुमारी सुन्तली, के गरेको यो पाराले? काम त गराइ हुँदैन।
2: ठेकदार साहब, हामी काम गरेका छौँ, उत्ति नै मेहनत गरेका छौँ, तर पनि हाम्रो ज्याला हरिदाईको भन्दा कम नै छ। ठेकदार साहब, हामीसँग पनि समान व्यवहार गर्नुहोस्।
4: कहीँ हामी पनि श्रमको मूल्यमा यस्तै भेदभाव गरिरहेका त छैनौ? लिङ्गको आधारमा कुनै भेदभाव नगरौं।
5: सामाजिक जनचेतनाका लागि तिलोत्तमा नगरपालिका र रेडियो लुम्बिनी एवं तिलोत्तमा टेलिभिजन मणिग्राम रूपन्देही।
6: नमस्कार हो नमस्कार नाई, यी बुढौती मे बुढा बुढी का बात कैल जाता? अका होई डाक्टर नी बहिनी, बड़की पतोहिया दुई जीव के भइल भाई, ओकरे देखरेख के जोगाड़ खोजल जात बा। आहा, ई होखे न तरीका सास ससुर के? हाँ, तब का पेट में बच्चा रहले के बाद दुई वर्ष के जब तक नाई हो जाले, ई हजार दिन में अम्मा और बच्चा के पोषण युक्त खाना खियाए के चाही और सर सफाई के बारे में ख्याल कैल जाला, तब बच्चा और अम्मा के दोनों जनी के स्वास्थ्य ठीक रही।
7: देखा, पाथर खोजत के भगवाने मिले जैसन हो गईल, और का करे पड़ाला डॉक्टर आइन बहिनी तनी बता दत?
6: ठीक बा, सुनल जाए, रेडियो में लगातार बाजत बा।
8: गोश मछली अंडा सबसे बढ़िया बा, गोश मछली अंडा सबसे बढ़िया बा,
6: फल फूल और साग पात बच्चा के खाना साथ साथ
7: सब मिल के खियावल जाए,
6: कमती में दुई साल तक महतारी के दूध न छोड़ावल जाए, बच्चा चालाक और निरोगी बनावल जाए। हाँ, हम ते बच्चा के स्वास्थ्य बनावे के संति 6 महीना पूरा भइले के बाद अम्मा के दूध के साथ सक भर ते घर के ताजा और तरकारी अंडा मछरी गोश हरियर साग पात और पियर जात के फल फूल खियावेली।
7: ओकरे साथ साथ गर्भवती मेहरारू के रोज रोज जितना खियावल जात रहल गे, उसे एक दवा बेसी दिहल जाए, और बच्चा के महतारी के जितना देत रहल गे रोज, उसे दुई दवा बेसी देवल जाए।
6: लेकिन ये सब खियाए वाला चीज और तैयार करे के खियावे के समय में सर सफाई में ठीक से ध्यान दिए के चाही, खास करके हाथ सफा रखा, खाए वाला सामान ठीक से धो के और पानी भी सक भर धिका के पिए के चाही, बुझलू ने?
7: आईडी नेपाल के आर्थिक सहयोग और सेतो गुरास बाल विकास सेवा रूपन्देही के व्यवस्थापन में संचालित पोषण मार्फत जीवन रूपांतरण परियोजना और रूपन्देही FM द्वारा सचेतना में जारी संदेश।
9: नमस्ते है नमस्ते, होइन बुढेसकालमा के कुरामा हो बुढा बुढी गफी तै?
10: के हुनु नर्स नानी, जेठी बुहारी दुई जुकी बाकी, सासु सालको मेसो खोज्दै छौ क्या?
9: आहा, यो हो नि तरिका सासु ससुराको। हो त, पेटमा बच्चा बसेदेखि दुई वर्षको हुन्जेलसम्मका यी हजार दिनमा आमा र बच्चालाई पोषणयुक्त खाना खुवाउने र सरसफाईका बारेमा ध्यान पुर्याउन सके आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सकिन्छ।
11: लौ, ढुङ्गो खोज्दा देउतै मिले झैं भयो, के गर्नुपर्छ भन्दिउँ त नानी?
9: ल, यो सुन्नु त, रेडियोमा फुकेको फुकै हुन्छ त।
12: माछा मासु अन्डा मिठो सबैभन्दा, माछा मासु अन्डा मिठो सबैभन्दा,
13: अनि फलफुल र सागपात बच्चाको खाना साथ साथ
14: सबै मिलाई खुवा।